तू मेरा कभी था ही नहीं, जो मेरा हो ना सका वो गिला भी नहीं। मैंने चाहा तुझे हर दुआ से